आज मी आयो तो कोर्ट हाई कोर्ट है बता दिया हो सुनी कोर्ट ही हाई उन्हें ले उन्हें साय मनीषा जो माई पूंछा

जल्दी पिटम मिला इनसे तो नशे कर के सर पे देखा है तो पंजाब सब्जियां तो पामा आई दा पामा या जा तल्ली बनुला वो को लमंगी ना नडवायो बनन दे इकाए कुनो इकाए पिगल कुनो इकाए सादू इकाए खानारी Atalan di mata azizna yang balo. Mangina sanin bengo panang kemana deh kai boy pen pen balo.